0: जी जी 11:30 बज गए।
1: सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
0: आज अर्जुन का बर्थडे है आंटी।
2: सारी दुनिया हंस रही है कि तुम उन गैराज के वर्कर्स के साथ नाच गाना कर रही हो।
0: लेकिन आंटी मैं राजीव से पूछकर यहाँ आई हूँ।
2: हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, तुम घर इसी वक्त आ रही हो या नहीं?
0: आंटी
2: जस्ट से यस और नो।
0: नहीं।